0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM ते. रेडियो 3ZZZ दे 92.3 FM ते पंजाबी दे इस प्रोग्राम विच आप सब नू जी आयां नू अज दा प्रोग्राम पेश करन लई मैं हरबीर सिंह आप सब दी सेवा दे विच हाजिर हाँ. सब तो पहला सारे सुनने वाले श्रोतियां नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल. अज दे इस प्रोग्राम विच शब्द कीर्तन खबरां गीत संगीत तो इलावा कुछ गलबात कुछ रिपोर्ट्स अपने श्रोतियां दे नाल सांझियां करांगे. प्रोग्राम दी शुरुआत हमेशा दी तरह लो गुरबाणी दे पावन शब्द नाल करदे हां.

0: करना चाहना है।
1: कौन?
0: मेरी छड। तू क्यों छाल मारन लग गया सी?
1: सब खत्म हो गया अंकल, मेरे सारे सपने टूट गए। IIT च एडमिशन भी नहीं होनी हुण, मेरी रैंक नहीं आई। आई हैव फेल्ड टुडे।
0: पर ये कोई एड्डी वड्डी गल तां नहीं।
1: हाँ, थोड़े लिए कोई वड्डी गल नहीं। तुसी कहना कदे स्कूल दी शक्ल वेखी होनी है, थोनू की पता एम्बिशंस की हुंदे ने, फेल होना की हुंदा है, हार जाना की हुंदा है।
0: हाँ, मैनू नहीं पता, पर मैं हुण रोटी खाण लग्गिया, ते रोटी खांदे होए मैं किसे नू मरदे नू नहीं देख सकदा। हाँ, उदों तक तेरे लिए मेरे कोल इक चीज़ है।